0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है महताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फें तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की। 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जों मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है। बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं। लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें मतलब टैक्टिक्स। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। खैर, बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: नुसरत साहब की आइकॉनिक आवाज में हमने सुना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपका ताशी है आपके साथ। और दर्द हल्का हल्का हो या सुरूर, दोनों ही हालतों में दर्दीले लोगों को बड़ा मजा आता है। गुलजार की वो गजल याद आती है मुझे कि दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। वाह जी वाह। और ये जो हल्का सा दर्द है ना, कुछ तो रिलेशन है इसका और रात का। जैसे जैसे रात और काली होती जाती है, ये दर्द और बढ़ता जाता है। अगला नगमा सुने मखदूम मोहियुद्दीन साहब की कलम, लता जी और तलत अजीज की आवाज में, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है। बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहंदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेश खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: जी इट्स हॉट।
1: फैयाज हाशमी साहब की कलम और फरीदा खानम जी की एवरग्रीन आवाज में सुनी हमने हम सब की पसंदीदा गजल आज जाने की जिद ना करो। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अभी तो इस सफर के दूसरे पड़ाव में ही है हम, अभी कहीं जाने का इरादा नहीं है मेरा। मुझे ना धीरे धीरे ये पता चला कि फेसबुक में वो इन रिलेशनशिप और सिंगल के ऑप्शन के साथ इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला ऑप्शन क्यों होता था। इंसान ऐसा जानवर है ना जो इतनी रेंज ऑफ इमोशंस को महसूस कर सकता है कि खुद उसे ना समझ आए वो क्या कर रहा है। दो शेर देखें जिनमें इश्क का कॉम्प्लिकेटेड नेचर साफ दिखाई देता है। आरजू लखनवी साहब लिखते हैं, दिल की जिद इसलिए रख ली थी कि आ जाए करार, कल ये कुछ और कहेगा मुझे मालूम ना था। ओए होए। और दूसरा मेरा बड़ा पसंदीदा शेर खुमार बाराबंकवी साहब की कलम से, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। उफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता था। खैर अब खुमार साहब की बात छिड़ ही गई है तो उन्हीं की कलम से हरिहरन जी की आवाज में अगली गजल, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ओनली ऑन मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening. My bank to put on.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
2: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन.
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं? हाँ
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: मुजफ्फर वारसी की कलम और हरिहरन साहब की आवाज में हमने सुनी गजल। झूम ले हंस बोल ले प्यारी, अगर है जिंदगी सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि अपनी डायरी के कुछ सफ़े पलटूं और आपको सुनाऊं एक पुरानी याद। हमारी जो हिंदी टीचर थी ना कविता मैम, वो बचपन में एक फ्रेज सिखाया करती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंट्री। ठीक है, और जिंदगी के सुख दुख, हंसी और आंसू, शोहरत और बदनामी, सब कुछ फेड हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका ये बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है इसी बात पर। लिखते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ओफो, मतलब इतना सटीक धारदार शेर लगता है ना मुझे ये। खैर, आए अगला नगमा सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से, चित्रा और जगजीत जी की आवाज में, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे। किस्सा कॉर्नर
1: कि आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा, जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं। आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा, कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर, मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: वाह, अहमद फराज की कलम और मेहंदी हसन साहब की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल रंजिश ही सही हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और अब जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, मुझे लगता है लोग कितने अजीब होते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब दुख भी सहने को तैयार है। पीरज़ादा कासिम साहब की एक बड़ी रिलेटेबल गजल याद आती है मुझे। वो लिख गए कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर दिया। खैर जानी, ऐसे ही अजीब अगर आप भी हो ना, तो आइए साथ मिलकर सजाएं ये खूबसूरत महफिल सिर्फ मिर्ची पर अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूँ। शाहिद कबीर साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये उम्दा गजल हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और कोई जब किसी शख्स को छोड़ जाता है, हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, अलग अलग वक्त लेता है उस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन अगर एक बात मैंने पाई है वो ये है कि उबर सब जाते हैं। स्वप्निल तिवारी साहब का एक शेर जहन में आता है जो इस नए साल और बिछड़े यार दोनों मौजू पे फिट बैठता है। वो लिखते हैं कि और कम याद आओगी अगले बरस तुम, और कम याद आओगी अगले बरस तुम, अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। वाह, मैं पता है लगभग भूल गया था इस शेर के बारे में, मगर उसकी याद आई तो साथ ही ये भी आ गया। खैर, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये अगला नगमा सुने आप। इट्स वेरी आइकॉनिक ऑब्वियसली। सानू एक पल चैन ना आवे, सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे?
2: मैं होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A, 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसिल है। एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव। 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लव्स से। रफ्ता, जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जाम्पल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती, मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें कुमार बाराबंकी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। आए हाय, तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं, और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपके नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: The phenomenon called Madhuri Dikshit. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये फिनोमेना ना पहले साइंटिस्ट बनना चाहता था। सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मैं साइंस स्टूडेंट थी, अपनी माइक्रोबायोलॉजी करना चाह रही थी और मैंने सोचा था, तभी मेरा ड्रीम थी कि मैं जेनेटिक्स में रिसर्च करूंगी किसी दिन। मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था, मैं 3 साल की थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ। तो स्कूल में भी मैं बहुत हिस्सा लेती थी, बहुत ट्रॉफीज जीते हैं स्कूल के लिए डांस कॉम्पिटिशन में वगैरह, ड्रामेटिक्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मेरे जो स्कूल में मेरी सबसे बड़ी बहन है उसकी फ्रेंड थी, उनके फादर राजश्री में काम करते थे। एक दिन उन्हें राजश्री वालों ने कहा कि जरा अपनी नजर रखना, कोई लड़की है क्या, ऐसा ऐसा रोल है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा नाम सोचा और उन्होंने आके मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपको इंटरेस्ट होगा क्योंकि ये इतना अच्छा डांस करती है। हम लोगों ने कहा नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में वगैरह, क्योंकि ना तो हम किसी को जानते थे, उनको छोड़ के और किसी को जानते नहीं थे जो मूवीज में हो। लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, कहा कि मिलिए राजश्री वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अपने जैसे लोग हैं। और जब उनसे मिले तो कहीं कॉन्फिडेंस आया नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। और स्क्रीन टेस्ट हो गई और पता नहीं वो फिल्म हो गई।
0: वेल, ये इनकी डेब्यू फिल्म थी 1984 की अबोध। उसके बाद तो 80s में इन्होंने तहलका मचा दिया था भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: सर वेरी गुड इवनिंग मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
3: हाँ बोलिए
4: सर। I'm so sorry सर but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
4: सर, I'm so sorry पूरा बताइए
3: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
4: आई एम सो सॉरी सर। सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: पागल पागल है,
4: अब तो देने पड़ेंगे सर।
3: हेलो
4: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
3: पागल के दिमाग खराब है क्या सर? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे?
4: अब तो फंस गए सर।
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
3: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: ये तो आपको पता होगा कि 80s में माधुरी दीक्षित की कुछ शुरुआती फिल्में कुछ खास चली नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर जब सुभाष घई ने उनको डिस्कवर किया तो फॉर्मली प्रॉपरली उनको लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या शेयर किया था।
1: जब मैंने अबोध की उसके बाद श्योर नहीं थे क्या करना है, मतलब मैं स्टडीज भी करना चाहती हूँ और मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ। आवारा बाप में जैसे सेकंड रोल था, मीनाक्षी शेषाद्री वाज द मेन एक्टर, तो 10-15 दिन का काम होता था और फिल्म यूज़ टू गेट ओवर, तो मैं एक्टिंग भी कर लेती थी और फिर वापस कॉलेज भी जाना शुरू कर देती थी। तो एक बार आवारा बाप के सेट पे मुलाकात हुई सुभाष जी की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर्मा मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा डांस है आपको करना है, विल यू डू इट। तो मुझे डांस तो बहुत पसंद था, सर यस आई डू इट। तो हमने वो किया, पिक्चराइज किया और तभी सुभाष जी ने मुझे बोला कि आप ये ऐसे फिल्में नहीं करना, कि आई वॉन्ट टू लॉन्च यू अगैन बिकॉज आई थिंक देयर इज पोटेंशियल इन यू। एंड दैट्स हाउ आई गॉट अनदर चांस। आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली सो वी डिडंट नो एनीथिंग एट दैट टाइम। मतलब जो इतने सारे वो एड्स भी आ गए तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा उसका भी, मुझे पता ही नहीं था कितनी बड़ी बात थी एट दैट टाइम। आज व्हेन आई लुक बैक आई फील ओ माय गॉड ये हुआ था तभी। तो ऐसा हुआ और यस आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम।
0: अच्छा घई साहब के प्लान के साथ गड़बड़ ये हो गई कि इससे पहले कि राम लखन रिलीज होती, विच हैपेंड इन जनवरी 1989, नवंबर 88 में तेजाब रिलीज हो गई और माधुरी ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
3: 80s में हिंदी फिल्मों के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या हुई? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सबसे बढ़िया ये चीज हुई कि माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई। वैसे तो उनकी डेब्यू फिल्म 1984 में आई थी, लेकिन 1988 में तेजाब के आने से तो सारा मामला ही ढंडलन हो गया ना। अच्छा, माधुरी को कब रियलाइज हुआ कि वो ऐसे ओवरनाइट सेंसेशन बन गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन कॉमेडी शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
4: मुझे पहली बार रिकॉग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो थे हीरोइन हीरोइन, तो भाग के आए दोनों। उन्होंने बोला, अरे मुझे पहचाना। बोलता है, मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने, तो दूसरे को बोलता है, देख देख मैं मोहिनी मोहिनी।
3: तो ये बैड ओवर मोहिनी या बैड ओवर माधुरी वाले टाइम का आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर पुरानी जीन्स विद चारों ओनली

0: माधुरी दीक्षित ने पता नहीं कितने गानों में राम जी का नाम लिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ओ राम जी बड़ा दुख दीना, या मेरा पिया घर आया ओ राम जी, या खलनायक के गाने में भी वो गाती है, मैं कैसी राम की गंगा हूँ, मैं तो बस नाम की गंगा हूँ। क्या ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए कोई साइन था कि उनकी लाइफ में भी राम नाम का कोई आने वाला है? सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या कहा था।
1: बहुत चिढ़ाया जाता है तो लोग कहते हैं आपने अपने गानों में इतना राम जी राम जी राम जी किया है कि आपको हस्बैंड भी राम ही मिले उनका नाम भी राम ही है, तो इसलिए लोग टीज करते मुझे।
0: भाई हम तो यही कहेंगे वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई वैसे ये जोड़ी किसने बनाई थी, सुनिए माधुरी ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे ब्रदर ने बहुत ही खुफिया किस्म से हमारी मीटिंग करवाई थी, तो मुझे भी पता नहीं था और मुझे लगता नहीं कि उनके भी फैमिली को पता नहीं था, ऐसे ही पार्टी घर में की सबको बुला लिया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई
0: और ये मुलाकात जीवन भर का साथ बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। You can catch me on Instagram @rj.charu, rj.charu, इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू.

0: नाची थी।
1: तो भैये नाच गाना और खाना किसी भी सेलिब्रेशन के तंबू के लिए ये दो नहीं राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकती ज्यादा हो जाएगा, ये दो सपोर्ट तो चाहिए रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस सेलिब्रेशन की आज हम बात करेंगे वो है हमारे ग्रोइंग अप इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो बहुत बड़ी डील होती थी। और सबसे बड़ी डील ये कि सिविल ड्रेस पहन के स्कूल जाना होता था, वो ड्रेस जो हमने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके या बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो करके हथियाई होती थी, या कई बार नहीं भी मिलती थी नई ड्रेस, आपको पुरानी शादी फंक्शन त्योहार वाली ड्रेस ही पहना दी जाती थी। लेकिन बड़ी किक मिलती थी ये सोच के कि वो पहन के हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल वालों को बताना होता था कि हम सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं सिविल ड्रेस में भी ठा लगते हैं। और वो सारी प्लानिंग करना कि जो टॉफीज के पैकेट बांटने हैं उनमें कौन कौन सी टॉफीज जाएंगी, पॉपिंस, एक्लेयर्स, मेलेडी, किसमी, मैंगो बाइट, या घर वाले ज्यादा मेहरबान हो जाएं तो रबर शार्पनर पेंसिल भी देते थे। और पूरी क्लास वेट करती थी कि कब कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। अच्छा, फिर अलग अलग क्लासेस में जाते थे अलग अलग टीचर्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि आपके क्रश की क्लास में भी जाएंगे आप, और अगर आपके बर्थडे वाले दिन क्रश एब्सेंट हो जाता था तो बड़ा दिल टूट जाता था कि हाय उसने हमें सिविल ड्रेस में देखा ही नहीं। दोज वर द डेज जब बर्थडे वाले दिन स्कूल में अपनी झांकी होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसिल है। एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: यार
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन और उस सेलिब्रेशन का डेकोरेशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हर घरेलू बर्थडे पार्टी में यूजुअली एक सा डेकोरेशन होता था, गुब्बारे जिनको फुला फुला के मुंह दुख जाता था, और सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी उस गुब्बारे में जिसको फुला के टॉफियां भर के सेंटर में लटकाना होता था और बाद में फोड़ना भी होता था। और याद है वो स्ट्रीमर्स या कलरफुल रिबन्स जिनको दीवार पे सेलो टेप से चिपका के हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था। भाई बड़ी मेहनत का काम होता था, कई बार टेढ़ा मेढ़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था, कई बार तो त्योहारों के बचे डेकोरेशन पीसेस भी लगा दिए जाते थे। और बर्थडे वेन्यू डेकोरेशन जो यूजुअली घर का ड्राइंग रूम होता था, उसके साथ साथ अपना डेकोरेशन भी होता था। वो ड्रेस पहनी जाती थी जो हमने बड़े टैंट्रम्स थ्रो करके, घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके नई खरीदी होती थी। कई बार किसी फेस्टिवल, ब्याह, शादी फंक्शन की पुरानी ड्रेस भी पहना दी जाती थी। मुझे याद है मैंने एक बार अपने बर्थडे पर लहंगा भी पहना था। और सबसे इम्पोर्टेंट होती थी वो कोन शेप वाली हैप्पी बर्थडे लिखी हुई टोपी, जिसका पतला सा इलास्टिक कई बार थुड़क करके टूट जाता था तो उसको गांठ बांध के जोड़ लिया जाता था। एक नंबर के जोकर लगते थे उसको पहन के, और हमको ऐसा लगता था पता नहीं क्या राजा बाबू लग रहे हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वो चीज है जिसके लिए पूरा झमेला, पूरा सेलिब्रेशन किया जाता था, बर्थडे गिफ्ट्स। हाँ, बर्थडे में आप गिफ्ट नहीं लाए तो बर्थडे में क्यों आए? मुझे याद है बचपन में ना हमारे पड़ोस में एक बच्चा होता था जो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में लिटरली घर के एंट्रेंस पे खड़ा होता था ये देखने के लिए कि कौन गिफ्ट ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। और अगर किसी के हाथ में गिफ्ट नहीं होता था ना तो उसको साफ साफ बोलता था कि पहले गिफ्ट लेके आ तभी खाने को मिलेगा। और याद है बर्थडे में उठा के कुछ भी गिफ्ट कर दिया जाता था, फूलदान, पेन, डायरी, टी सेट, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे तो एक बार तौलिए भी गिफ्ट मिले थे। और याद है इन गिफ्ट्स को हम यूजुअली काइट पेपर से रैप करते थे, तब इतनी फैंसी पैकिंग थोड़ी ना होती थी, कई बार अखबार में लपेट के भी दे दिए जाते थे, कई बार तो गिफ्ट में शगुन स्टाइल कैश भी दे दिया जाता था। और जिसका बर्थडे होता था वो गिफ्ट्स की वेट करता था, जो बर्थडे पार्टी में आते थे वो रिटर्न गिफ्ट की। और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था जब कोई छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मिलता था, कोई एक्लेयर्स या एक टॉफी। और सबसे बढ़िया चीज, सारे बच्चों के जाने के बाद उन सारे गिफ्ट्स को खोलना। हाय, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

करता हूँ। ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे खूबसूरत चीज ग्रीटिंग कार्ड्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आज भी ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, लेकिन ऐसे मस्त नहीं होता है, उस टाइम पे तो जरूरी होता था। और सबसे खास बात, हाथ से बना के दिया जाता था। कई बार बजट होता था तो आप आर्चीज गैलरी वगैरह से भी ग्रीटिंग कार्ड ले आते थे और उसपे कुछ सुंदर सुंदर सा लिख देते थे बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल के लिए। और याद है वो म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड्स भी आते थे जिनको खोलते से ही टा टा टा टा टा टा बजने लग जाता था। और अक्सर ग्रीटिंग कार्ड को गिफ्ट के ऊपर पेस्ट किया जाता था सेलो टेप से। कई बार ज्यादा प्राइवेट होता था तो अलग से भी दे दिया जाता था। लेकिन वो जो हाथ से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे ना, फिर चाहे उनमें कितनी भी गंदी ड्राइंग की हो, कितनी भी गंदी हैंडराइटिंग हो, उनकी अलग ही बात होती थी। वो ऐसे लगता था कि किसी ने आपके लिए जेन्युइन कोई एफर्ट किया है। हाँ, आज की डेट में जिफ्स, स्टिकर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या AIC कोई बढ़िया सा मैसेज निकाल के किसी को भेज देना वो भी अच्छा है, पर वो हाथ से बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड, उफ उफ उफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

ग्रोइंग अप ईयर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन की बड़ी भारी जरूरी चीज बर्थडे केक। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैं अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेशन याद करूँ तो शुरुआत में केक घर पे ही बनता था। वो एक गोल मटोल सा ओवन होता था, सी थ्रू टाइप का, जिसमें ऐसे केक दिखता था फूलता हुआ, और उस केक को फिर टूटी फ्रूटी चेरीज या जेम्स जो होती थी उनसे डेकोरेट किया जाता था। उसकी आइसिंग भी घर पे ही बनती थी, वो शुगरी चीनी चीनी सी होती थी। और कैंडल्स, वो नंबर वाली कैंडल्स तो बाद में आई थी और वो महंगी भी आती थी, तो कभी आती थी कभी नहीं आती थी। जो सिंपल पतली वाली कैंडल्स होती थी उन्हीं से काम चला लिया जाता था। कई बार स्पाइरल कैंडल्स भी होती थी। एक बार तो मुझे याद है हमारे घर में किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में केक पर दिवाली की जो बची हुई कैंडल्स थी ना वही लगा दी गई थी और केक काटने के लिए चाकू, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता था किचन का, उसी पे रिबन बांध दिया जाता था। फिर बाद में बाजार वाले केक्स आ गए, उसमें भी लिमिटेड फ्लेवर्स होते थे, चॉकलेट, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट। केक यूज्ड टू बी अ सच अ बिग डील। केक कटिंग कितना इम्पोर्टेंट इवेंट वैसे आज भी होता है, और कितना जरूरी हो जाता था कि केक कटिंग से पहले बर्थडे पार्टी में पहुंचना है, नहीं तो फिर केक खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, गिफ्ट के पैसे कैसे वसूल होंगे। ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, हाय सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Pepe Mirchi. Escabana, poscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La
1: virpa, la murga. Mirchi, murga. हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पक्का Purani Jeans with Charu, only on

कहे कोई मुझे जंगली कहे,

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता था फोटोज क्लिक करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ग्रोइंग अप ईयर्स में ये अलग एक्सपीरियंस इसलिए भी होता था क्योंकि फोटोज खींचने के लिए एक अलग कैमरा होता था जिसमें हम 24 या 36 फोटोज वाली रील डलवाते थे और कोई भी फोटो वेस्ट नहीं की जाती थी। बहुत सोच समझ के फोटोज क्लिक की जाती थी क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ फोटोज ही खींच सकते थे और एक फोटो तो मैंडेटरी होती थी बर्थडे पे, बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय की वो फोटो जिसमें उसने वो कोन वाली टोपी पहनी होती थी जिसपे सामने हैप्पी बर्थडे लिखा होता था। क्या एक नंबर के जोकर लगते थे वो पहन के। खैर यूजुअली ये फोटोज घर का कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो क्लिक करता था और फिर वेट होता था कि ये रील्स को कब फोटोज की दुकान पे ले जाया जाएगा, इन्हें डेवलप कराया जाएगा, उन्हें एल्बम में लगाया जाएगा और जब तक अगला बर्थडे नहीं आएगा उसी एल्बम को बार बार देखा जाएगा। हाय वो डेज जब फोटोज एक्चुअली मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, यादों को सहेज के रखने के लिए क्लिक की जाती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

गोल माल, चकोर माल, तिकोना माल, हर तरह का माल फिट हो जाता था वो छोटी सी प्लेट में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की हम बातें कर रहे हैं, और उस प्लेट की बात कर रही हूँ मैं जिसमें स्नैक्स सर्व किए जाते थे। पूरी दुनिया सिमट जाती थी उस प्लेट में। समोसा, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का रस समोसे के नीचे घुसा हुआ, समोसे की चटनी गुलाब जामुन से लिपटी हुई, केक या पेस्ट्री की क्रीम में रसे मिसे आलू चिप्स। और ऐसा भी होता था कि खा हम अपनी प्लेट से रहे होते थे लेकिन नजर दूसरे की प्लेट पे होती थी कि कहीं कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमारी प्लेट में नहीं आई, उसकी प्लेट में है। और अगर ऐसी कोई आइटम होती भी थी तो ही करते हुए आंटी के पास जाते थे और बोलते थे कि भाई बाकी सब तो मिल गया, एक वो नहीं हमको मिला, वो भी प्लीज दे दो। और कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोला, लाइम, ऑरेंज ये फ्लेवर्स तो होते थे, कई बार रसना रूह अफजा भी टिका दिया जाता था, चाय कॉफी भी पिलाई जाती थी कई बार। हाय, उस कागज की प्लेट के आइटम्स का जो स्वाद होता था ना, वो स्वाद लाइफ में कहीं और है नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशंस, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनका मेन हिस्सा होते थे गेम्स एंड एक्टिविटीज। एक तो भाई टेप रिकॉर्डर पे कसेट लगा के डांस किया जाता था, सारे बच्चे अपने मूव्स दिखा रहे होते थे, उनको लगता था बड़े कूल हैं। कुछ के होते भी थे, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम के हिट गानों की मिक्स टेप चलाई जाती थी। फिर गेम्स होते थे जैसे ट्रेजर हंट, पासिंग द पास। मैंने तो अपने बर्थडे पे स्टापू भी खेला हुआ है, रस्सी भी कूदी हुई है, और दुनिया में सारे बर्थडे की यूनिवर्सल गेम म्यूजिकल चेयर, सारे घर की कुर्सियां उठा के गोले में सजा दी जाती थी। एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी म्यूजिक चलाने की, और कुछ बच्चों का ना साइड में अलग से कोई गेम चल रहा होता था। हाय, ग्रोइंग अप इयर्स की वो बर्थडे सेलिब्रेशंस और वो गेम्स, वो एक्टिविटीज। पुरानी टीम्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Milci, burga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, आप तो सर पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wird bala burka. Milci burka.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
1: हाँ बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

भारत वर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस खोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरणामृत गोमुख से गंगा सागर तक युगों युगों से श्रद्धालुओं को मुक्ति दिलाता रहा है।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हम ओम शांति कहते हैं, क्या वो शांति सिर्फ हमारे लिए होती है या पूरी दुनिया के लिए? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
3: ओम शांति टू यू टू। मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि ओम शांति क्यों बोलते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कई जगह पे इंटरव्यूज देखे आपके, मैंने सिस्टर शिवानी के देखे, सब जगह ओम और शांति ये दो शब्दों को मिला के जब बोलते हैं तो इनका क्या तात्पर्य होता है?
4: ओम शांति एक ग्रीटिंग है जिसका मतलब है ओम माना आई एम।
3: ठीक है, मैं हूँ,
4: और शांति माना पीस। आई एम पीस, आई एम पीसफुल सोल।
3: अरे वाह, क्या बात है।
4: तो एक ये जस्ट एक जेंटल रिमाइंडर होता है कि मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम पीस। एंड द अदर पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी ओरिजिनली एक पीसफुल सोल है। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी।
3: वाह, क्या बात।
4: पीस का वाइब्रेशन हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम किसी को मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहते हैं तो भाव क्या रहता है?
3: हाँ,
4: आपके मॉर्निंग बहुत अच्छे रहे,
3: बहुत शुभ रहे। हाँ।
4: इसी प्रकार से ओम शांति मना जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि आप भी पीस हैं और मैं भी एक पीसफुल एनर्जी हूँ।
3: वाह, क्या खूबसूरत बात कही सुबह सुबह आपने।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: बनीता पारिख जी अहमदाबाद से लिखती हैं कि मुझे एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ट्रिगर जल्दी होती है और नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आती है, क्या करूं?
3: एंगर इश्यूज क्या है? कोई भी चीज आप बार बार करते हैं तो बहुत नेचुरल नेचर हो जाती है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, मना वो बहुत पहले आप बड़ी बात पे करते थे, फिर आप जैसी कोई चीज आप करते रहे। हमने वो एग्जांपल एक बार पहले भी लिया था कि जापान में एक बार रिसर्च हुई थी, तो एक कंपनी थी जहाँ पर उनको बहुत गुस्सा आता था जो काम करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि बेसमेंट में ऐसे पैडेड वॉल्स बनाई, वहां पर बेसबॉल बैट्स रखे और कहा कि किसी को भी गुस्सा आए तो कस्टमर पे नहीं निकालना, जो एम्प्लॉयज थे, आप नीचे जाओ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, बैट से आप वॉल को हिट करो, फिर ऊपर आकर के कस्टमर को डील करो। एंड दे डिड दैट रिसर्च फॉर फ्यू मंथ्स। अब रिजल्ट में क्या आया, मतलब उसमें तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनका गुस्सा बढ़ गया या कम हो गया या सेम रहा। तो जो रिजल्ट, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?
2: मतलब होना चाहिए कि कम हो गया, क्योंकि उनको एक जरिया मिल गया निकालने के लिए, लेकिन आपने मुझे पहले बताया था इसके बारे में
3: जी,
2: उनका बढ़ गया क्योंकि वो आदत बन गई थी अब उनकी।
3: ये जो हमें लगता है ना कि निकाल देंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन निकालने से खत्म नहीं होता, आपको वो चीज करने की आदत पड़ रही है। तो अगर आप गुस्सा बार बार करेंगे तो वो आदत पड़ती चली जाएंगी, और इसीलिए फिर छोटा ट्रिगर भी काफी होता है। पहले कोई बड़ी बात होती है तो आप करते हैं, लेकिन करते जाएंगे तो फिर छोटा सा ट्रिगर, छोटा ट्रिगर क्या होता है, आपने मेरी तरफ देखा नहीं, मैं अंदर आया था, मैंने आपको नमस्ते किया, आपने मुझे नमस्ते नहीं किया, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। उसको पता भी नहीं होगा, उनका इंटेंट भी नहीं होगा, लेकिन आपका मन कहेगा आपने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इट कुड बी एज स्मॉल एज दैट। इसीलिए आप अभी शिफ्ट लाना पड़ेगा ना। एंगर से शिफ्ट होना क्या है कि अभी हम छोटे छोटे ट्रिगर में ट्राई करना शुरू करें। आज से अपने को बोलें कि अभी कोई बात होगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। आप अब 10 दिन, अगर 10 बार दिन में करते हैं, एक बार होगा, 9 बार नहीं होगा। बट वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। 9 बार आप रिएक्ट करेंगे, एक बार आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, किसी ने नहीं भी किया तो आपने न गलत सोचा। एंगर बिगिंस इन द माइंड, ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन मन में डिस्टर्ब होना, वहीं से एंगर शुरू हो जाता है। एंगर के बहुत रूप है, इरिटेट होना, रेज, रूठना, बात नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। हम टीम सारा काम कर रहे हैं, अब सडनली मेरे सर में दर्द है, मुझे कोई जरूरी काम है, आप है कुछ नहीं, लेकिन आप सहयोग नहीं देना चाहते, विड्रॉ कर लेना, वो सब गुस्से का ही रूप है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि अंदर में वो गुस्सा है। गुस्सा फिर नफरत में बदल जाता है, नफरत फिर रिवेंज में बदल जाती है। तो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। दिन में 10 बार आता है, एक बार भी नहीं आपने नहीं किया, पैट योर सेल्फ कि कम से कम एक बार तो नहीं किया। जस्ट लाइक व्हेन यू लीव स्मोकिंग,
2: एक कम हुआ, बहुत अच्छी बात है,
3: धीरे धीरे धीरे धीरे,
2: फिर कल नहीं किया, अच्छा स्मॉल प्रोसेस।
3: फिर भी स्मोकिंग में शायद आप एक झटके से भी छोड़ पाएंगे, संस्कार ऑन ऑफ का बटन नहीं होता।
2: समय लगेगा,
3: थोड़ा समय लगता है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो एक प्रैक्टिस है। कोई चीज प्रैक्टिस है तो डिफिकल्ट नहीं होती। ए लिखना है, ए लिखना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से वो चीज बहुत इजी हो जाती है। ऐसे गुस्सा छोड़ना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग, नहीं करना है इसका पूरा अंदर में डिटरमिंड थॉट होना चाहिए। सेकंड, अगले दिन से जब आप शुरू करेंगे, हो सकता है कि आप 10 बार में से 9 बार करें, एक बार ना करें। ग्रेजुअली एक ऐसा दिन भी आएगा, एक बार किया, 9 बार नहीं किया। हैव कंपैशन, हैव फेथ, बी डिटरमिंड, चला जाएगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब मन भटक जाता है, क्या ध्यान और मेडिटेशन उस कमी को पूरा कर सकते हैं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक हमारे टीम में एक इंसान है, उनका नाम है गौरव ठाकुर। वो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझे पिछली बार पूछा था, मैंने सोचा आपसे पूछूं। वो कह रहे हैं कि भाई जब आप फाइनेंशियली वीक हैं या ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, तबाह हो गए हैं, तब स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रैक्टिस की जाए?
4: सी, जब कोई भी विघ्न होता है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप लेवल पर है, आप अगर टूटे हुए हैं तो टूटे हुए को हम क्या कह रहे हैं? मन टूटा हुआ है। अब किसी भी चीज में अगर सफल होना है तो पहले मन शक्तिशाली होना जरूरी है।
3: जी,
4: आई अंडरस्टैंड जब लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की बातें हम तब करें जब कम से कम रोटी कपड़ा मकान हो।
3: बिल्कुल,
4: लेकिन वो शरीर की जरूरत है।
3: हाँ।
4: और शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी आपका मन तो शक्तिशाली होना चाहिए ना।
3: बिल्कुल।
4: आज आपको काम करना है, किसी से बात करना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, कोई डिसीजन लेना है, हार्डवर्क करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको डिसिप्लिन्ड होना है, डेडिकेटेड होना है, ये सब कहाँ से आएगा? ये मन की शक्ति है।
3: जी।
4: जब मन टूट जाता है फिर लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता।
3: हाँ।
4: मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी बार बार फेल होता हूँ।
3: सही बात।
4: ये निशानी है कि अंदर से कमजोर है।
3: जी।
4: जब मन शक्तिशाली होता है तो कई विघ्न आते हैं। फाइनेंशियली अगर आप ब्रोकन है भी और अगर ऐसा कोई विघ्न आया भी है, पहले तो हमेशा जो एक चीज अगर हम उसको याद रखें ना, जीवन में जब भी कोई बात आती है उस तूफान को तोहफा बनाते हैं,
3: उस तूफान को तोहफा बनाए।
4: हाँ, ये लाइन बहुत अंदर पक्की होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो है कहते हैं कि ये जो सारा है इसमें कुछ मंगल विधान है, कल्याणकारी है। ये अंदर बहुत पक्का होना चाहिए, इसमें कुछ बेनिफिट समाया है। वो बेनिफिट कई बार इतना ही होता है, आप हम सब इस चीज के अनुभवी हैं कि जब भी कोई चैलेंज आता है उस समय डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पार करने के बाद हमें हमेशा लगता है कि इसने हमें और
3: शक्तिशाली बनाया,
4: एक्सपीरियंस्ड बनाया, हमारी हिम्मत बढ़ी, हमारी शक्ति बढ़ी। बिना विघ्न के शक्ति नहीं बढ़ती है। बिना चैलेंज के जो इनर पावर्स हैं वो ग्रो नहीं होती है। जैसे अगर आपको कोई मूर्ति बनानी है, आजकल भी देखें ना, अभी गणपति के दिन है, कोई भी मूर्ति आप बनाते हैं देवी देवताओं के भी, ठोके बिना नहीं बनती है। उसको ठोकना पड़ता है फिर ही वो मूर्ति तैयार होती है। ऐसे हम लोग भी तभी तैयार होते हैं, ये भी तो मूर्ति है ना एक प्रकार से। जब ठोक माना कोई विघ्न है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पेपर है, वो हमारी इनर पावर को डेवलप करता है, हम और एम्पावर होते हैं। तो पहले तो एक्सेप्ट करें, अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, तो किसी भी विघ्न का हम सामना कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अब अमित लिखते हैं कि मैं लीफ सोसाइटी पुणे से हूँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हूँ और इस फील्ड में मेंटर भी हूँ। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लेके आए। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने ही फैमिली मेंबर्स पर। गुस्सा आने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब भी फील करता हूँ, लेकिन उस मोमेंट पर अपने गुस्से को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। उन्होंने दो इंसिडेंट भी लिखे हैं। कहते हैं कि जैसे अगर खाना टाइम पर नहीं बना हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि मुझे ऑफिस में लेट हो रहा होता है। या दूसरा इंसिडेंट है, कभी कभी अगर मैं अपनी वाइफ के साथ मुझे बाहर जाना होता है और वो तैयार होने में बहुत देर कर देती है तो भी मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे खुद पर बुरा लगता है कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हैं इस इशू को समझने में और ठीक करने में? तो सबसे पहले तो मैं अमित जी, इससे पहले कि सिस्टर बात करें, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि आपने रिकग्नाइज किया कि आपके पास एक ये प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें। Over to you, sister.
2: अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एक रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन, कि जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर कर रहे हैं। फिर सेकेंड चीज परिवार पर कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये जो होता है ना कि परिवार पर नहीं करना, स्टूडेंट पे कर सकते हैं, ये काम नहीं करता। अगर आपको उसको खत्म करना है तो टोटल खत्म करना पड़ेगा। अंश रह गया तो वंश बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
2: जो हम कई बार कहते हैं अंश भी रह गया। आज आप देखें कई बार जो कैंसर आदि के पेशेंट्स होते हैं, वो कैंसर वापस रिलैप्स नहीं हो उसके लिए कितना कीमो और रेडिएशन लेते हैं, क्योंकि अंश भी नहीं रहना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: एक सेल भी रह गया तो वो उसके वापस आने के चांसेस हैं। इसमें भी ऐसे ही है।
1: क्या बात।
2: काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भी फर्स्ट थिंग नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए। दूसरा तरीका निकालेंगे काम कराने का, असर्टिव होंगे, कामली कराएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं चाहिए तरीका। पहले ये बहुत फर्म होना चाहिए। सेकेंड चीज है, जैसे वो आने लगता है ना तो उसी समय वो थॉट आता है। आप पहले थॉट को पकड़ने की कोशिश करें। हमारे साथ क्या होता है, जब वो फुल ब्लोन हो जाता है
1: उसके बाद हम
2: फिर तो प्रेशर कुकर है, अभी वो पूरा भर गया, वो तो फिर फटता ही है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, वो फिर एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट पहले थॉट से होगा कि ये, और वो होता हमेशा थॉट यही है क्योंकि गुस्से का जो कारण है मेरे अनुसार होना चाहिए। तो बार बार हमें अपने को कहना पड़ेगा सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। इस लाइन को रटना पड़ेगा, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू माई ट्यून्स। आई डोंट नो, समवेयर वी बिलीव कि मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, तो मेरे अनुसार होना चाहिए। फिर हम अंदर से प्रेशर भी डालते हैं, उनको सफोकेट भी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको जो करना है वो करे। आप आराम से कह दें, लेकिन आप डिस्टर्ब वो नहीं आपको कर रहे हैं,
1: आप हो रहे हैं,
2: आप गलत सोच करके हो रहे हैं। आप शायद ये चेंज नहीं कर सकते कि वो जल्दी तैयार हो जाए। सच में
1: बिल्कुल नहीं।
2: देयर इज नो कंप्लीट श्योरिटी अबाउट इट। आप 20 बार भी बोलेंगे तो भी जरूरी नहीं है वो करे कि नहीं करे। हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है वो ना चेंज हो। कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो आपको तकलीफ दे रही है, उनको तकलीफ नहीं देती है।
1: बिल्कुल,
2: अगर वो उनको तकलीफ नहीं देती तो वो क्यों चेंज करेंगे? लेकिन आप अपने को तो चेंज कर सकते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन तो चेंज कर सकते हैं ना। इट इज ओके।
1: उल्टा मुझे लगता है कि कभी कभी प्रेशर में आदमी और जैसे होता है ना कि जल्दी तैयार हो तो चार चीजें भूल जाता तो और ज्यादा समय लगता है तैयार होने में। तो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। गुस्सा इस बात में होने की कोई जरूरत ही नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब दिल का हिसाब किताब बिगड़ जाए तो क्या मन के पन्ने भी उलट जाते हैं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपने जब कहा कि भाई ठोकर तो जब लगेगी इंसान को, उसके बाद एक्सेप्ट करके अपने मन को स्थिर करें, शांत करें, उसके बाद आगे बढ़े, जो नॉर्मल सवाल आते हैं, बात हमको समझ में आ गई। लेकिन जब इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, बाकी सारे क्राइसिस में ना आदमी धीरे धीरे संभल जाता है, ओवर अ पीरियड टाइम उसको समझ में आता है कि रिलेशनशिप अगर हील होना है, कहीं पे भी और कुछ हीलिंग होती है, वो धीरे धीरे हो जाती है। फाइनेंशियल इंसान के जब प्रॉब्लम्स आती है ना, वो बहुत टाइम लगती है और उसमें वो पूरा बिखर जाता है। क्योंकि अगर आपके लेनदार घर आने लग गए, बैंक के फोन आने लग गए, कभी कभी बहुत और भी तरीके हैं पैसे निकालवाने के, गुंडे भी घर आ जाते हैं, उस समय मेंटल जो आपके आपके अंदर गुजर रहा होता है वो बहुत पेनफुल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज बाहरी स्थिति आपकी ऐसी हो रही होती है जो अंदर एक कौतूहल पैदा करती है।
4: आपको लगता है कि फाइनेंशियल पेपर सबसे डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली में चार प्रकार के जो विघ्न आते हैं किसी के सामने, उसमें सबसे इजी धन का माना जाता है।
3: अच्छा,
4: पहला जो इजी हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन धन फिर भी हमने कमाया है, कोई प्रॉब्लम है भी फिर कमा सकते हैं
3: जी।
4: धन सेकेंड लेवल का जो चैलेंजिंग है रिश्ते
3: जी,
4: जन जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, डिफिकल्ट है। आपके घर में कोई रहता है, निंदा करता है, अपमान करता है, टोंट करता है, या कोई भी और जो है। थर्ड लेवल
3: तन
4: बहुत डिफिकल्ट है, आप किनारा नहीं कर सकते। आप अगर किसी को तन का पेपर आ जाता है, चाहे वो हिसाब किताब है, खुद का ही हम कहें कार्मिक अकाउंट है, आप भाग तो नहीं सकते ना।
3: सही बात,
4: तन के पेपर एक बहुत सफरिंग होती है जिससे आप नहीं एस्केप कर सकते।
3: हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है,
4: हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सफरिंग क्या करेंगे आप? आपको वो चीज भोगनी ही पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। कई बार आप देखे कोई कहेगा भी मेरा शरीर छूट जाए, बस बहुत हो गया, मैं सहन नहीं कर सकता, पर आपको सहन
3: करना पड़ेगा,
4: करना ही पड़ेगा। जब तक वो समय नहीं है शरीर छोड़ने का, आप कितनी भी इच्छा करते रहें, आश रखते रहें, वो नहीं होता। मना आपको वो चीज सहन करना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा टफ पेपर होता है
3: मन
4: का। जिनको कोई मानसिक बीमारी है, कोई भी प्रकार का, जो ये हम कहते हैं ना, सुनने में तो लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जो लोग कहते हैं किसी चीज में मन नहीं लगता, उठने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, सोते हैं तो उठा नहीं जाता, उठे हैं तो नींद नहीं आती, मन देयर इज टू मच नेगेटिविटी। आप देखो वो कितना सफर कर रहे हैं, पल पल सफर कर रहे हैं, कितना उनको सहन करना पड़ता है, कहाँ भागेंगे अपने मन से। तो इसलिए पेपर है, फाइनेंशियल पेपर है, पर उसको इतना बड़ा नहीं बनाएं। जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। होता क्या है, जब कोई धन का पेपर आता है और हमारे पास ताकत नहीं होती उसको फेस करने की, उसका इम्पैक्ट मन पर आने लगता है।
3: सही बात है,
4: मन पर आप सोचने लगेंगे अब क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हम कहते हैं ये सोचना नेचुरल है, लेकिन नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ऑप्शन है, चॉइस है। अगर हम ऐसे ही सोचते जाएंगे, नेगेटिव सोचते जाएंगे, ओवरथिंक करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाना शुरू कर देंगे। वो जो डिप्रेशन है वो हमने क्रिएट किया है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.4।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सिस्टर। गुड मॉर्निंग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया। कुछ मैंने भी गलत बोल दिया, कुछ उसने भी गलत बोल दिया। वो हर्ट हो गई है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी और के फोन से किसी तरह उससे बात हुई तो बोलती है कि एक साल वेट करो। अभी हम दोनों अलग रह रहे हैं। मेरा घर टूटने से मैं बचा सकूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज हेल्प मी।
3: इसीलिए हम कई बार कहते हैं, अगर गुस्सा आ भी जाए ना, बोलना नहीं चाहिए। बोलने में क्या होता है, आपने फिर रियलाइज किया, आपने अपोलोजाइज भी कर लिया। सामने वाला जब बहुत कमजोर होता है तो उसको पकड़ लेता है, रिपीट करता रहता है, हर्ट क्रिएट कर लेता है, ब्लेम आपको करता है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा, फिर सॉरी भी कह दिया, तो बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक उसकी नहीं है। पर अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। वही चीज रिपीट करता रहता है और जख्म बना लेता है। अब उन्होंने जख्म बना लिया, आपने सॉरी भी कह दिया। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके जख्म, हर जख्म हील होता ही है। कोई समझ से हील होता है, कोई समय से हील होता है।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई नॉलेज से, कोई टाइम से,
3: होना तो समझ से चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साल वेट करो? जो चीज एक साल में ठीक करनी है वो एक सेकंड में भी ठीक हो सकती है। एक साल में तो वो जख्म और गहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है। समझ तो क्या कहती है, मेरी साड़ी पे दाग लगा, मैं एक साल बाद थोड़ी ना धोऊंगी। दाग लगा है ना, तो हम तो चाहे भी कप रख करके कहेंगे पहले धोए फिर पियेंगे, नहीं तो ये गहरा हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो समझदार तो क्या करेगा, अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप। मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फुल स्टॉप। बात करना शुरू करो, गांठ को तोड़ करके फेंको। लेकिन अगर समझ नहीं है तो समय हीलिंग करता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर कहते हैं। टाइम हीलिंग कैसे करता है, वो चीज मर्ज होने लग जाती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सीन्स लाइफ की होती है, तो वो पीछे वाली का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए। आप उनको अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं। आप परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आप उनको सेंड कर सकते हैं, जो उनकी हीलिंग फास्ट करेगा। तो आप डेडिकेटेड टाइम फिक्स करें, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। आप मेडिटेशन में बैठे, उस मेडिटेशन में आप बोलें कि मैंने आपको दुख दिया, मेरा भाव नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं परमात्मा से हीलिंग एनर्जी लेकर आपको भेजता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है कि आप खुश रहे।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि आप खुश रहें, ये मेरी अंदर की शुभ भावना है। मॉर्निंग इवनिंग आप ये करते जाए, आपका वाइब्रेशन उनको हील करेगा। और वो हीलिंग हो जाएगी तो वो जितना समय लगना उससे बहुत कम समय में वो ठीक हो जाएंगे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: स्टेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे हमारे मन के इक्वेशन को सॉल्व करता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आप कह रहे हैं कि एक पेपर में फेल होने से बाकी पेपर भी खराब हो जाते हैं।
4: 100% हमें लगता क्या है, वो बाहर की एक सिचुएशन बाकी सबका कारण है,
3: लेकिन ऐसा नहीं है।
4: नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से एक बात आती है, एक परिस्थिति बाहर से आई, एक चैलेंज आई, आप अगर स्टेबल रह करके उसको पार करते तो ना हेल्थ की प्रॉब्लम होती, ना मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती, रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते। पर एक को फेस नहीं कर पाते तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं।
3: बहुत बढ़िया,
4: बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती नहीं है, ये बहुत जरूरी है। कई बार कहने में क्या आता है, मेरे घर में ना एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी हुई है, एक के बाद एक आती जा रही है, पता नहीं किसी ने हमारे पर नजर लगा दी है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया है। ऐसा नहीं होता, एक को फेस करने की ताकत नहीं थी तो हमने और अनेक क्रिएट कर लिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। भीरू या शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: मोहन पाटिल पूछ रहे हैं कि कोई अच्छा काम करने जाता हूं तो सबसे पहले नेगेटिव विचार मन में प्रभाव डालते हैं। इन नेगेटिव विचार को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं?
3: ट्रांसफॉर्म करते हैं उनको। नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है, एनवायरनमेंट भी कई बार उसमें कंट्रीब्यूट करता है। आप कुछ नया करने जाते हैं, दो चार कह देते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जो कर रहे हो वही करते रहो, क्या जरूरत है। तो अपने साथ बैठ करके कहें नहीं मुझे ये करना है, बहुत अच्छा होगा, होना ही है। कोई चैलेंज भी आ सकता है पर उसको ओवरकम करेंगे। फेलियर भी हो सकता है पर मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। मिस्टेक भी हो सकती है तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कौन से सफल लोग हैं जिन्होंने भूले नहीं करी या मिस्टेक नहीं करी। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ वो बहुत जरूरी है, फिर आप उस चीज को कर लेंगे।
2: तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सामने से अगर काला भी आ रहा है तो आप सफेद फेंकते रहिए।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is मिर्ची मॉर्निंग्स. और पांच मिनट और वाली गैंग जो है उसको ऑफिशियली उठाने आ चुकी हूँ मैं. यहाँ पर चाय जो है इमेजिनरी नहीं है, बिल्कुल गर्मा गर्म है, जस्ट लाइक द गॉसिप कमिंग अप लेटर इन द शो. एंड ऑनेस्टली यार, देसी एक्सपैट लाइफ जो है ना, वो क्या लाइफ होती है. सुबह अमेरिका का वेदर कन्फ्यूज करता है और दोपहर में मम्मी के कॉल्स कन्फ्यूज करते हैं और शाम आते आते खाने में क्या खाना है ये कन्फ्यूज करता है. बट डोंट यू वरी, टूडे आई एम serving full on good vibes, Bollywood beats, spicy conversation and ढेर सारी मिर्ची की मस्ती. अगले कुछ घंटों तक तुम्हारा दिन तो सेट हो ही गया है और मॉर्निंग्स अगर अच्छी जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है. तो फिलहाल बड़ा बच्चे मुझे फॉलो कर लो. मेरा नाम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. फिलहाल बैक टू बैक मिर्ची दैट बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Fermeci!
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana! Burga, burga! La virtua la burga! Merci, burga!
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening, my bank to put on.
2: हाँ बोलिए
3: सर, I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
3: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
2: मैं पागल पागल है क्या?
3: आप तो देने पड़ेंगे सर।
2: हेलो
3: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
2: पागल है क्या? खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे?
3: अब तो फंस गए सर।
2: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया।
2: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and you're vibing with me on Mirchi Mornings. और आज की डेट यानी कि 18th of May, हिस्ट्री में क्या हुआ था, let's find out. सबसे पहले 1804, नेपोलियन बोनापार्टे became emperor of France. 1912 में इंडिया रिलीज श्री पंडालिक, considered as one of the first Indian motion pictures in Mumbai. Fast forward to 1974, India conducted its first nuclear test called Smiling Buddha in Pokhran, Rajasthan. Then came 1980, Mount St. Helens erupted in Washington, US. 2009 May, Sri Lanka civil war officially came to an end after decades. It was a huge historical turning point for the region. तो एक ही दिन में कितना सारा drama, ambition and science ने survive किया था. और आज के दिन हमारी life choices तो survive कर ही सकती है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची mornings पर, अब जाकर देखो मुझे. मिर्ची प्रिस is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp करो मुझे 9033 मिर्ची पर. That's 9033647244. फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. You're hanging with Priscilla on Mirchi Mornings. Aur ye suno, journalist Saurabh Dwivedi has officially entered his main character era and made his acting debut in Netflix's Kartavya alongside Saif Ali Khan. Lekin social media ne kya kya? Full savage mode on kar diya hai. People are trolling his performance, saying his dialogue delivery sounded less like a villain and more like someone's reading the 9 PM bulletin. Yani ki main villain kam and namaskar, aaj ke mukhya samachar. Zyada lag rahe the wo. Ek ex-user ne to ye tak lik diya hai ki from Ambarish Puri to this, what a downgrade. Oof. Internet really wakes up every day and chooses violence over everything else. Lekin honestly, switching careers publicly takes guts. Aajkal to log LinkedIn bio change karne se pehle bhi 4-5 baar soch lete hain. And somewhere this is like peak desi energy, right? Engineer becomes DJ, doctor becomes food blogger, journalist becomes actor, and politicians are doing stand-up comedy. एंड मम्मी फिर भी कहती है बेटा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर दिया होता ना तो आज कहीं और ही होते. ऑल्सो कैन वी अप्रिशिएट सैफ अली खान जिन्हें इनकी एक्टिंग झेलनी पड़ी हो. बट इस पर से एक सवाल आया मेरे दिमाग में, व्हाट डू यू थिंक, पीपल शुड बी काइंडर ऑनलाइन या फिर अगर थोड़ा बहुत मजाक में ट्रोल कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. स्लाइड इनटू माय डीएम्स ऑन इंस्टा एंड एक्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alrighty then, this is your girl Priscilla with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. Aur ab weather ka hal chal. So here's the forecast before you confidently leave home. Right now the temperature is sitting at a cool 68 degrees Fahrenheit with mostly cloudy skies. Lekin plot twist hai ki 69 degrees feel hone wala hai temperature. Subha ke 7 baje to kafi sunny mahol tha. Lekin if you've been waiting to be the main character like Bollywood movies who walks out of the house with a song, aaj is your डे. आज के दिन का हर एक मोमेंट बड़ा ही अच्छा जाने वाला है. एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट द टेम्परेचर रेंज. आज जाने वाला है 66 डिग्रीज फारेनहाइट से लेकर हाई अप टू 94 डिग्रीज फारेनहाइट. और बरसात का सीन ये है कि 0 मिलीमीटर्स रेन इज एक्सपेक्टेड जस्ट लाइक लास्ट 24 आवर्स. अगले 24 आवर्स में भी कोई बरसात नहीं होने वाली है. एंड कम्पेयर टू यस्टरडे, टुडे इज अ बिट हॉटर. यस्टरडे पीक्ड एट 89 डिग्रीज फारेनहाइट एंड टुडे इज फ्लेक्सिंग एट 94 डिग्रीज फारेनहाइट. तो समर रियली entered the chat uninvited. So, इसी बात पर लेयर के प्लेयर बनो और बहुत सारा पानी पियो. Keep yourselves hydrated और साथ में मिर्चीदार वाइब्स कैरी करो. Just like me, बोले तो प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और अभी फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग. And now it's time to know what's happening around the world. सबसे पहले एन इंडियन रेस्टोरेंट ओनर नेम्ड मनीष कुमार, हु हैज लिव्ड इन जापान फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स, ब्रोक डाउन आफ्टर हिज बिजनेस वीजा रिन्यूअल गॉट रिजेक्टेड अंडर स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन रूल्स. ही नाउ मे हैव टू शट द रेस्टोरेंट ही इज रन फॉर 18 इयर्स. नंबर टू पर हार्ट ब्रेकिंग अपडेट कमिंग इन फ्रॉम इंडिया. मैसेजेस फ्रॉम ट्विशा शर्मा, अ नोएडा वुमन फाउंड डेड जस्ट मंथ्स आफ्टर मैरिज, हैव सर्फेस्ड व्हेन शी रिपोर्टेडली टोल्ड अ फ्रेंड, आई एम ट्रैप्ड. हर हस्बैंड एंड मदर in law have reportedly been booked as investigations continue. And number three per cricket, say CSK and RR both have the same wins, same points and even the same NRR, but CSK is still above RR on the points table because apparently their NRR, that's net run rate, is microscopically better beyond three decimal places. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta or X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga, la Virtua, la Burga, Milci, Burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी, इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and you're tuned into Mirchi Mornings and ये वो जगह है जहाँ पर हम साथ में हंसते हैं इन्फ्लेशन पर लेकिन साथ साथ में रोना भी आ जाता है कभी कभी टैक्सेस कट होने पर. So listen to this madness coming straight out of Harry. एक वायरल वीडियो ब्लोइंग अप ऑनलाइन शोइंग अ यंग मैन्स अपार्टमेंट ऑन द 7th फ्लोर विथ एब्सोल्युटली नो एलिवेटर एंड टू रीच ही हैज टू क्रॉस 134 स्टेयर्स. नाउ द अपार्टमेंट रिपोर्टेडली कॉस्ट्स अराउंड 600 यूरोस अ month and the internet is collectively shocked because imagine carrying groceries up 134 stairs after work. Bhai, by the time you reach home tumhari ice cream to chai ban jayegi, right? And honestly jo desi expat ne is video ko dekha hoga na wo keh raha hoga wait, New York, Toronto, Mumbai and Bengaluru landlords already trained us for this level of suffering. Don't you think? The video sparked a lot of conversations around crazy urban rent prices and tiny living spaces in big cities worldwide. Basically, the global housing market said, you want sunlight, space and affordability. In teenon mein se ek hi mil sakta hai, bhai. Ya phir kabhi kabhi teeno hi nahi milte hai. But low key, that guy's cardio must be unbelievable. Forget gym membership, yaar. 130 4 स्टेयर्स ऊपर नीचे करते करते मेरी बॉडी टाइगर श्रॉफ से अच्छी बन जाती. टेल मी दो व्हाट्स द वाइल्डेस्ट अपार्टमेंट फीचर यू हैव एवर सीन या तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा अद्भुत चमत्कारी एरिया है. शेयर इट विद एवरीवन. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. राइट नाउ मिर्ची दर बैंगर्स लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑफ कोर्स ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आज तुम अपना बर्थडे किसके साथ मना रहे हो। लेकिन उसके पहले मे योर बैंक बैलेंस ग्रो फास्टर देन योर स्क्रीन टाइम। एंड आज तुम्हें इरिटेटिंग रिलेटिव्स के फोन आए ही ना, वो भूल रहे हैं तुम्हारा बर्थडे। तो सबसे पहले आज तुम्हारे साथ है कॉमेडी क्वीन टीना फे, एंड ऑल्सो यू शेयर इट विद जॉर्ज लूकस, the creator of Star Wars, and singer Jack Johnson, and international star Chow Yun-Fat. So if it's your big day today, celebrate loudly, eat the cake, forget about the calories, post your selfies, and send me shoutouts on your birthday. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for सोना एंड चांदी का रेट अपडेट only on Mirchi Mornings.
2: Raju's wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,700 per troy ounce. $4,700 per troy ounce के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दार गानों की बारी है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

परास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. You're back with Priscilla on Mirchi Mornings, and it's time for your favorite segment of the show. Yahan par hum pata karte hain around the world kya chal raha hai. सबसे पहले टू यूएस नेवी EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट्स कोलाइडेड मिड एयर ड्यूरिंग द गन फाइटर स्काइज एयर शो इन आइडाहो. वीडियोस शोड द जेट्स कोलाइडिंग एंड एक्सप्लोडिंग आफ्टर क्रैशिंग टू द ग्राउंड, बट थैंकफुली ऑल फोर क्रू मेंबर्स सेफली इजेक्टेड. नंबर टू पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शेयर्ड AI जनरेटेड इमेजेस शोइंग हिमसेल्फ वॉकिंग विद अ कैप्चर्ड एलियन एंड अनदर वन प्रेसिंग अ जायंट रेड बटन इन स्पेस विद स्पेस फोर्स रिटन ऑन इट. एंड फाइनली इंडियन PM Narendra Modi visited the Afsluitdijk Dam in the Netherlands. A massive water management project, experts say, could inspire Gujarat's proposed Kalpasar project. The project is being studied for ideas around freshwater storage and large-scale dam systems. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, सुबह उठ के बैंक बैलेंस चेक कर लिया है तो आप क्यों ना पता करें राशिफल क्या कहता है. मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स हेड टू राशि जोन नंबर वन.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: It is यानी मेष राशि. Money moves looking strong today. New ideas can actually bring extra cash your way. Side hustle का कीड़ा एक्टिव हो रहा है. Lucky color for you is electric green. Lucky number is 19. Taurus यानी कि वृषभ राशि. Big boss energy today, babe. Whether social life हो या work life हो, people are noticing you. Basically LinkedIn aura, Bollywood का confidence. Lucky color is orange. Lucky number is 4. Gemini यानी मिथुन राशि. Venus is shifting vibes, but the sun is coming in hot. Translation: Stop doom scrolling and go out there. Attention is waiting for you. Lucky color is lemon yellow. Lucky number is 27. Cancer yani Karak Rashi. Soft heart, strong intuition today. Relationships improve when you stop overthinking every K in texts. Lucky color for you is off-white. Lucky number is 11. Leo yani ki Sinha Rashi. Career stars are shining brighter than Times Square tonight. People want your ideas, your vibe and your honesty. साथ साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस फ्री में मिलता है. लकी कलर इज क्रिमजन रेड. लकी नंबर इज नंबर वन. वर्गो यानी कन्या राशि. योर ब्रेन इज स्पॉटिंग डिटेल्स एवरीवन एल्स मिसेस टुडे. बेसिकली एफबीआई की एनर्जी है बट विथ बेटर स्किन केयर. लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 22. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन नंबर वन. राशि जोन नंबर टू लेकर आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो मिर्ची देयर बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला. इंस्टा एक्सपर्ट मुझे ढूंढो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. दैट इज MIRCHIBRIS and WhatsApp number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, Mirchi Mornings, but this is your girl Priscilla signing off क्योंकि अब मेरे जाने का time हो चुका है. लेकिन the Indian rupee has hit a fresh all-time low now at 96.20 against the US dollar. The rupee reportedly crossed the 96 mark for the first time recently and has weakened further amid global tensions and rising oil prices. Meanwhile, Brent crude oil climbed above $110 a barrel after reports of an attack on the UAE nuclear प्लांट. एंड हर देसी एक्सपर्ट जो मुझे फिलहाल सुन रहे हैं अपने दिमाग में ना मेंटल मैथ कर रहे होंगे कि अच्छा तो इंडिया ट्रिप का बजट और इमोशनल डैमेज दोनों इंक्रीज हो गया है अब तो. तुम जब तक अपनी चाय कॉफी ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, मैंने शो फिनिश कर दिया है. अब जा रही हूँ मैं, टाटा बाय बाय बोल के मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी. तब तक के लिए तुम बने रहो मिर्ची पर. बी गुड एंड बी काइंड. ऑफकोर्स खाओ पियो ऐश करो मजे करो, मुझे याद करो. और अगर मुझे मिस करोगे तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन Instagram and X, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp जो तुम कभी करते नहीं हो मुझे 9033 Mirchi, that's 9033647244, that's my number on WhatsApp. And right now stay tuned and stay hot.

उदास सा गाना जिसमें अमिताभ बच्चन साहब उदास से मुंह फुलाए से घूमते रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, उदासी में भी एक अलग खूबसूरती होती है। अगला जो गाना हम सुनने वाले हैं उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब ऐसे मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। त्रिशूल फिल्म का गाना। वैसे आपको पता है ये जो त्रिशूल टाइटल है ये यश चोपड़ा साहब ने राइटर सलीम जावेद को दिया था कि भाई ये टाइटल है, इस पे फिल्म लिख दो। और जब इन्होंने फिल्म लिखी तो यश चोपड़ा साहब को समझ नहीं आया कि ये स्टोरी टाइटल से कैसे रेलेवेंट है। तो उन्होंने समझाया कि इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक बाप, उसका एक जायज बेटा, एक नाजायज बेटा। वैसे अगर आप सोचें ना तो बहुत मायनों में त्रिशूल सिग्निफाइज द स्टोरी ऑफ द फिल्म कि कैसे अमिताभ बच्चन एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके अपने ही बाप से बदला लेते हैं, कैसे अपनों के दिए घाव एक त्रिशूल के जैसे उनके सीने में उतर जाते हैं, कैसे पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। सो दैट वे बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो हेलो
5: सर, मेरे को गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
4: हाँ बोलिए
5: सर। सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
4: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात
5: सर, आप तो सर पूरा बता रहे
4: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
5: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
4: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
5: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
4: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
5: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
4: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
5: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
4: पागल पागल है क्या?
5: आप तो देने पड़ेंगे सर।
4: हेलो
5: आप तो देने, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
4: कौन बोल रहा है? विपिन?
5: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
4: पागल है, दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे।
5: अब तो फंस गए सर।
4: हेलो
6: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया।
4: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
6: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
4: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
6: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ये पगला
0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ज्यूल थीफ की शूटिंग करते करते प्रेम पुजारी की स्क्रिप्ट लिख डाली देवानंद साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, जब ज्यूल थीफ फिल्म की शूटिंग नेपाल में हो रही थी तब देवानंद साहब ने वहाँ पे दूरबीन से चाइना का बॉर्डर देखा और उनको ऐसा कुछ दिखा कि एक सिपाही छोटे से पपी के साथ, डॉगी के साथ खेल रहा है। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ सीन भी फिल्म में जरूर होगा। और अगर आप प्रेम पुजारी फिल्म देखें तो उसमें एक छोटा सा डॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम भी आगे बढ़ते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: 90s के गाने की लाइंस हैं कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। शबाना आजमी जी ने एक बार एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था कि जिन एक्टर्स के साथ वो काम करती थी कौन लेट लतीफ होते थे, कौन टाइम पे होते थे, सुनिए।
1: There was a time when I was working with Sanjeev Kumar in a film by Gulzar Saab called Namkeen, and in the evening I was working in a film called Jwalamukhi with Prakash Mehra and Shatrughan Sinha. So, ये तो लिखा हुआ था कि 7 बजे की शिफ्ट है, लेकिन संजीव कुमार फिल्म सिटी में 12:30 बजे से पहले नहीं पहुंचा, और फिर 2 बजे की शिफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा 5:30 बजे से पहले नहीं पहुंचे। बच्चन साहब एंड शशि कपूर फर्स्ट पर्सन टू अराइव ऑन द सेट, दीज वर द टू पीपल हु वुड जस्ट, आप अपनी घड़ी, नाउ दीज वर पीपल यू एडमायर्ड, एंड देन इट इज टू यू हुम यू चूज टू एम्युलेट।
0: क्या बात है भाई, चलिए अभी देर नहीं करते, टाइम हो गया है बहुत ही ब्यूटीफुल गाना सुनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: देखूं।
1: भाई कुछ दिन पहले ना मैं टीवी पर नसीब फिल्म देख रही थी और मेरे ऐसे मतलब होश उड़े जा रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब लिटरली मैं फिल्म देखते हुए सोच रही थी, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, कितने सारे एक्टर्स। और मनमोहन देसाई साहब की ना इस बात में तो दाद देनी पड़ेगी भाई, मल्टी स्टारर फिल्म्स वो जो बनाते थे उसमें इतने सारे एक्टर्स होते थे। सोचिए आप, इतने सारे एक्टर्स को मैनेज करना, हैंडल करना, उनके ईगो क्लैशेस, उनके टैंट्रम्स, उनकी पंक्चुअलिटी, जो भी उनकी डेट्स वगैरह, वो सब हैंडल करना, उफ कितना मुश्किल हो जाता होगा। ये नसीब फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रीना रॉय, ऋषि कपूर, किम, और फिर विलन्स में सब भर रखे हैं भाई, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, फिर प्राण साहब भी हैं, कितने सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। Hats off to this guy, मनमोहन देसाई साहब, या जो भी उस टाइम पे मल्टी स्टारर फिल्म्स बनाते थे, सब दाद के काबिल हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: भांग की गोली ओ नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1981 की फिल्म दर्द का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नक्श लियालपुरी साहब ने इसे लिखा है। वैसे इनका असली नाम जसवंत राज शर्मा था, नक्श लियालपुरी इनका पेन नेम था। इनकी एक और गजल मैं पढ़ रही थी, तुझको सोचा तो खो गई आँखें, दिल का आईना हो गई आँखें, खत का पढ़ना भी हो गया मुश्किल, सारा कागज भिगो गई आँखें, कितना गहरा है इश्क का दरिया, इसकी तह में डुबो गई आँखें, दो दिलों को नजर के धागे से एक लड़ी में पिरो गई आँखें, नक्श आबाद क्या हुए सपने और बर्बाद हो गई आँखें। वाह वाह वाह वाह। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक और सुंदर गजल सुनेंगे, शहरयार साहब की लिखी हुई, उमराव जान फिल्म से। सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल होना चाहिए।
4: जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
0: इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है मोहम्मद रफी साहब ने अपना जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया था उसकी लाइंस क्या थी? तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तो कहीं आस पास है दोस्त। 1981 में रिलीज हुई फिल्म आस पास का ये गाना है। ऐसा सुनने में आता है कि रफी साहब ने ये गाना अपनी डेथ के कुछ आवर्स पहले उसी दिन 31 जुलाई 1980 को ही रिकॉर्ड किया था। है ये गाना रिकॉर्ड हुआ था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए। और एलपी और रफी के सुपर्ब कॉम्बिनेशन का एक और गाना यहाँ पर सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: 1972 की फिल्म गोरा और काला, जिसमें गोरा भी राजेंद्र कुमार बनते हैं, काला भी राजेंद्र कुमार बनते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, दो जुड़वा भाइयों की स्टोरी है जिनमें फर्क ये होता है कि एक गोरा होता है और दूसरा किसी डिसऑर्डर की वजह से काला। इस रोल के बारे में एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए राजेंद्र कुमार साहब ने क्या कहा था।
1: गोरा और काला भी करने की वजह जो ये थी, वो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक काले का और एक गोरे, तो वो जो मौका था एज एन एक्टर वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काले का रोल बहुत पसंद था, उसको बहुत शौक से मैंने किया और पूरा पांव से लेकर सर तक काला बनना पड़ता था और 3-3.5 घंटे लगते थे। तो उसके बाद फिर जब गोरे की बारी आती थी तो 1-1.5 घंटा उसको साफ करने में लगता था, फिर गोरा बनना पड़ता था। खैर, तो बड़ा मजा आता था उसमें।
0: यार, पुराने जमाने में इनको ये सब करने में ज्यादा दिक्कत आती होगी ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, रिसोर्सेज नहीं थे, और उसी वजह से ना, क्योंकि अब हमको इतने इफेक्ट्स और CGI वाले सब चीजें देखने की आदत हो गई है, तो पुरानी फिल्मों में जब ये सब चीजें देखते ना, कई बार थोड़ी फनी भी लगती है। खैर, दोज वर द डेज। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है बप्पी दा ने, बप्पी लायरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड भी बनाया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रिकॉर्ड था एक ही साल में 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड करने का। यस दिस हैपेंड इन 1986। इन 33 फिल्मों में 15 तो हिंदी फिल्में थी भाई, वो वैसी वाली फिल्में जो 80s में नहीं आई थी, मैं बलवान, इल्जाम, इंसाफ की आवाज, सिंहासन, मेरा धर्म, ऐसी फिल्में। फैक्ट्री लगी हुई थी भाई, फैक्ट्री, गानों पे गाने निकल रहे थे। चलिए अभी जो गाना निकल कर आया है बप्पी दा का कंपोज किया हुआ, इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

1975 की फिल्म मौसम का ये गाना। पिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए शर्मिला टैगोर जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर गुलजार साहब थे, और आपको पता है गुलजार साहब इस रोल के लिए पहले जरीना वहाब, जो तब नई नई थी, उनको कास्ट करने का सोच रहे थे। लेकिन शर्मिला टैगोर जी को जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो ये रोल करना चाहती हैं। और जिस तरह फिल्म का सब्जेक्ट था, गुलजार साहब को लगा कि कोई पॉपुलर एक्ट्रेस होगी तो फिल्म को बेचने में आसानी होगी, उसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए फाइनली शर्मिला टैगोर जी को साइन किया गया। चलिए, दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम, रोल रोल अवार्ड अवार्ड पे होता है उसे पाने वाले का नाम। मेरा नाम है चारू, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची

0: रानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: हाँ बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: कच्चा? अच्छा
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूँ?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Rani Jeans with Charu, only on

आय हाय हाय हाय, दो डगे की नौकरी और लाखों का सावन, क्या कंपैरिजन बिठाया है मलिक साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वर्मा मलिक इस गाने के लिरिसिस्ट है, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम। और ये जो गाना है ना, ये एक्चुअली फिल्म में जो मौसमी चैटर्जी का किरदार था उन पे पिक्चराइज्ड होना था, लेकिन उस टाइम वो सॉर्ट ऑफ फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, तो जीनत अमान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। एंड अगर आप फिल्म देखें ना, तो जीनत अमान का जो किरदार है, उनका जो रोल है, उसके साथ ये गाना का जो मूड है, जिस तरह का ये गाना है, वो जाता नहीं है। चलिए अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं राइट पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: खयाम साहब की ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है खयाम साहब जब 16-17 साल के थे, ये मैं 1943-44 की बात कर रही हूँ, तब जब इन्होंने अपने घर में कहा कि ये फिल्मों में एक्टर बनना चाहते हैं, तब इनके साथ क्या हुआ एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने शेयर किया था।
1: एक्टिंग के लिए ये हुआ कि घर वालों ने हमें निकाल दिया और पिटाई भी हुई, लेकिन एक माहौल था घर में शायरी का एंड मौसीकी के रिकॉर्ड सुनना, शायरी और अदबी किताबें, कुतुबखाना, वो एक घर में माहौल था। लेकिन इसकी हमने सजा भुगती और घर निकाला, कहेंगे देश निकाला कहें, वो हमने सहा
0: जी। और घर से निकले तो पंजाब के राहों से होते हुए, लाहौर से होते हुए, लुधियाना से होते हुए बॉम्बे पहुंचे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुन लेते हैं खयाम साहब की एक और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑन मिर्ची।

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने के राइटर का नाम है अख्तर रुमानी। अख्तर रुमानी साहब एक राइटर थे जिन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं, कुछ गाने भी लिखे हैं जिनमें से एक ये गाना है। और अख्तर रुमानी साहब ना जो आइकॉनिक रेडियो प्रेजेंटर थे अमीन सयानी साहब, उनके दोस्त थे ये दोनों। सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में साथ में पढ़ते थे। इनफैक्ट इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज थे, इन्हीं के साथ कॉलेज में जो थे एक तो सिंगर महेंद्र कपूर साहब और डायरेक्टर विजय आनंद देवानंद के भाई। ये चारों लोग सॉर्ट ऑफ एक ही बैच के आप कह सकते हैं। इसी बात पे आप भी अपने कॉलेज के स्कूल के दोस्तों को याद कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

0: सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उन्डन हो आप, और पूरा जमाना फिलहाल एक चीज पे अटका हुआ है, एंड दैट इज कैन फिल्म फेस्टिवल। इफ यू टॉक अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, कहाँ एक तरफ तारा सुतारिया का डेब्यू हो रहा है, कहाँ हमारे इन्फ्लुएंसर्स रेड कार्पेट वॉक कर रहे हैं, और हमारी मीडिया जो है वो भाई तारीफों के पुल बांधे जा रही है कि हमारी ये वाली फिल्म, वो वाली फिल्म, कई सारी फिल्म कैन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है। कैन की सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ दो फिल्म्स ऑफिशियल सिलेक्शन में शामिल हो पाई हैं। पहली मूवी है शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स, जिसको डायरेक्ट किया है मेहर मल्होत्रा ने, जो एक FTII ग्रेजुएट रही हैं। इट इज अ वेरी स्वीट स्पेशल फिल्म। वहीं दूसरी फिल्म जो इस लिस्ट में आई है, दैट इज अम्मा आर्यन। ये जॉन एब्राहम की अनरिलीज मलयालम फिल्म है। उसका रिस्टोरेशन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन फिर से लेकर आया है कैन फिल्म फेस्टिवल में। एंड माइंड यू, दीज आर दी ओनली टू ऑफिशियल सिलेक्शंस। बाकी जो आप हल्ला सुन रहे हैं ना कि भैया फलाना फिल्म ढिमकाना फिल्म मार्केट में जा रही है, हाँ मार्केट में आप भी अपनी फिल्म लेकर जा सकते हैं, थोड़े पैसे देने पड़ते हैं ऑफ कोर्स, और वहां जो ऑडियंस है वो तो ओहो, लेट्स नॉट गेट देयर। सो या, फिल्मी दुनिया में हर दूसरी चीज सच हो ये जरूरी नहीं, बट इसका पर्दाफाश मैं करती हूँ।

0: Milci.
1: Iskra bana, puska bana, saka bana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vie de la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
4: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: I'm so sorry सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: I'm so sorry सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। दुश्मन का दादा जैकी श्रॉफ। अरे अरे, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, ये अपकमिंग फिल्म है जैकी श्रॉफ की, उसके बारे में जिसका नया गाना आया है दुश्मन का दादा, विच इज अ सुपर हीरो एंथम। बेसिकली फुल देसी वाइब है, पैक्ड विद स्वैग, मैडनेस एंड अनस्टॉपेबल एनर्जी। मूवी की अगर बात करें, इट इज गोना रिलीज इन द थिएटर्स ऑन 29th ऑफ मे, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है, अनाउंस कर दिया है अपने सेपरेशन के बारे में। काफी टाइम से ये स्पेकुलेशंस चल रही थी, मतलब फोटोज डिलीट किए जा रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। सो 4 साल की इनकी शादी रही, बट दे हैव डिसाइडेड टू चेरिश देयर फ्रेंडशिप फॉर श्योर फॉर द फ्यूचर, विशिंग देम ऑल द लव एंड पीस एट द सेम टाइम। थ्री इडियट्स के सीक्वल की बात कर लेते हैं यार। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी स्टारर, जो ये फिल्म अब आएगी, ये फीचर करने वाली है अ टाइम जंप विद अ न्यू स्टोरी लाइन ट्विस्ट ऑफ कोर्स। सो राजकुमार हिरानी डायरेक्टोरियल, ये फिल्म जो है 2022 के सेकेंड हाफ से ऑन फ्लोर्स होगी। एंड नॉट टू मेंशन, विकी कौशल इस मूवी के चौथे इडियट के तौर पे नजर आएंगे। बाकी की डेट्स पता चलती ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई ये नहीं देखा तो क्या ही देखा।
1: OTT and chill.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड यस, उस सीरीज की बात करना चाहती हूँ जिससे मैंने काफी ज्यादा रिलेट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट सपने वर्सेस एवरीवन, जिसका सीजन 2 अभी हाल फिलहाल आया है। एंड माइंड यू, इस सीरीज के ड्रॉप होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको IMDb पे 9.4 की रेटिंग मिली है। मतलब आप सोचो, 10 में से 9 इंसान तो इसको अल्टीमेट लेवल पे पसंद कर ही रहा है। तो अगर ओवरव्यू दूं अबाउट द सीरीज, जैसा कि नाम बताता है सपने वर्सेस एवरीवन, तो यहां पे अलग अलग प्रोटैगनिस्ट्स हैं और उनके सपने हैं और उसके बीच में बहुत सारी ऊंच नीच होती है। और एक जो विलेन है इस सीरीज के, आए हाय हाय मामा बोले तो कुकरेजा, विच इज प्लेड बाय विजयंत कोहली। वेल, आई विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम इन अ वाइल। तो अगर आपको इस सीरीज के बारे में ओवरव्यू चाहिए, विजयंत कोहली एज एन एक्टर को जानना है और उनके साथ कुछ फन गेम का हिस्सा बनना है, देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे कुछ ही देर में यहीं पे मिलेंगी। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: महाभारत के कंस मामा को भी कंपटीशन दे रहे हैं ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नीचे पे ट्यून इन हूँ आप एंड रिसेंटली एक सीरीज का सेकंड सीजन आया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सपने वर्सेस एवरीवन। कसम से जब से मैंने ये सीरीज देखी है आई मीन बोथ द सीजंस आई एम जस्ट इन ऑल विद इट। हर दूसरे इंसान को मैं रेकमेंड भी कर रही हूँ कि भाई प्लीज देख ले, यू लव इट एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट। वैसे अगर बताऊं आपको, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था इस सीरीज के आए हुए एंड इसको IMDb पे 9.4 की रेटिंग भी मिली है, यानी 10 में से 9 लोग तो इसको अल्टीमेट लेवल पे पसंद कर ही रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद द विलन ऑफ द सीरीज, बोले तो कुकरेजा जी, बोले तो मामा, बोले तो विजयंत कोहली। सो एज द नेम ऑफ द सीरीज सजेस्ट, सपने वर्सेस एवरीवन। तो सपने इंसान को बड़े देखने चाहिए या रियलिस्टिक सपने होने चाहिए?
3: सपने बड़े देखने चाहिए। सपने बड़े देखना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ट्रिगर करना, एग्जीक्यूट करना, वर्क स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दोस। बड़े देखने चाहिए फॉर श्योर, नॉट रियलिस्टिक सपने देखना तो इज लाइक फिर तो आप बहते चले गए, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा।
0: और कोई एक अनरियलिस्टिक ड्रीम जो आपने कभी देखा था?
3: मैं अनरियलिस्टिक नहीं बोलूंगा, वो भी रियलिस्टिक हो जाएगा। आई वांट टू डू अ लीड इन अ फिल्म और अ वेब शो। पता नहीं, कोई मेरे राइटर दोस्त अगर देख रहे हैं लिखेंगे मेरे लिए, बड़े प्रॉमिसेस करते रहते हैं हमेशा कि तू इतना अच्छा एक्टर है तेरे लिए अच्छा कुछ एज अ लीड लिखने को मन करता है।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे?
3: मैं होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K 35/14A 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा. पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना.
4: हिट गाना.

0: अच्छा सपने और पैसों में चूज करना हुआ तो आप क्या करोगे?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची भी ट्यून्ड इन हूँ आप एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद सपने वर्सेस एवरीवन के विलेन, बोले तो विजयंत कोहली सर, जिन्होंने इस सीरीज में मामा बोले तो कुकरेजा का रोल प्ले किया है। देन ऑफ कोर्स सर, सपने और पैसों की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपसे भी जान ही लूं कि आपके लिए सपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पैसे मूला?
2: ऑफ कोर्स मनी मैटर्स। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सारे एक्टर्स को बोलता हूँ कि एक तो स्ट्रगल वर्ड से मुझे बड़ी चिड़ है, जो बोलता है ना बॉम्बे में क्या कर रहा स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो छाती चौड़ी करके बोलते हैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत चिड़ मचती है। बोला यार कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा कुछ ना कुछ, बी पॉजिटिव और हो ही जाता है। सो मेरी टू ऑल दो सो कॉल्ड स्ट्रगलर्स मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यार वो साथ में ना कुछ एक काम देख लो, साथ में कुछ, पैशन इज गुड बट पैशन से घर में रोटी नहीं बनेगी। सो मे बी डू अ स्मॉल जॉब समवेयर, मे बी डू फ्रीलांसर, मे बी कास्टिंग वाले को किसी को असिस्ट कर लो, मे बी असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, फिल्म लाइन में कोई काम देख लो, प्रोडक्शन में कहीं जुड़ जाओ, जिससे एक बंधी हुई सैलरी आती रहे। नहीं तो आप जिंदगी भर अगर वो करते रहोगे ना तो फिर आप अच्छे रोल्स भी नहीं चुन पाओगे, बिकॉज आपके ऊपर एक प्रेशर होगा यार, किराया भी देना है, घर का खर्चा भी चलाना है। सो या आई मीन मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट फॉर मी आई हैव बीन ब्लेस्ड, एज इन जो मैंने बताया आपको अभी शुरू होने से पहले कि मैं कुछ एक बिजनेस मैंने शुरू किया था, तो इट्स डूइंग प्रीटी गुड। सो इसलिए मेरे को पैसे की कभी कमी खली नहीं है, उस तरफ का जो दुख है वो मुझे नहीं पता शायद, तो इसलिए या मतलब मेरे सपने पैसों से रिलेटेड नहीं होते, बट वैसे होते हैं कि यार मैं अपने पैशन को लेकर और अपने घर वालों को लेकर इन सबको लेकर जरा सिक्योर करके चलूं।
0: All right, so in short, I must say, सपने देखने के साथ साथ सपनों के लिए जिम्मेदारी लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, and we'll continue the conversation after a while. Till then, you stay tuned. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: यार ये सच हो जाए ना तो जिंदगी मुकम्मल हो जाती है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप और मैं आपके और मेरे सपनों की बात कर रही हूँ। कसम से बताना, अगर आज के डेट में ये सपने सच हो जाएं तो आपसे ज्यादा खुश इंसान तो इस दुनिया में होगा नहीं। जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल सी हो जाएगी। और सपनों की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद एक्टर विजयंत कोहली, जिन्होंने सपने वर्सेज एवरीवन में विलन का रोल प्ले किया है, दैट इज कुकरेजा AKA मामा। सो लेट्स कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन अगेन। सर, सपने वर्सेज बहुत सारी चीजें चली हैं इन द एंटायर सीरीज, अब हम रियल लाइफ में अगर आपसे पूछें सपने वर्सेज किस्मत वाला सीन कभी हुआ है आपका?
3: बिग टाइम। आप जितने मर्जी अच्छे एक्टर हो जाओ, सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके जानू करी थी मैंने धर्मा की, आई प्लेड आदित्य द एल्डर ब्रदर इन दैट। ओके जानू के बाद कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही थी, मैं बड़ा परेशान था, दो साल हो गए थे। 2017 में रिलीज हुई थी, 2016 में हमने शूट की थी, कुछ काम नहीं आ रहा था। तो बीच में कविश सिन्हा बॉम्बे के कास्टिंग डायरेक्टर है, कविश ने मेरे को बोला कि विजयन भाई हम लोग दिल्ली में कास्टिंग कर रहे हैं पल पल दिल के पास के लिए, सो वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर अ स्मॉल पार्ट इन दिस, इट्स अ होटेलियर पार्ट और ये वो करके। मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं करूंगा, मैं मिलने चला गया था उससे दिल्ली में। सो उसने बोला अच्छा भाई काम करो, ऑडिशन मेरे को दे दो, मैं ऑडिशन सनी सर को दिखा दूंगा। सनी सर खुद डायरेक्ट कर रहे थे, उनको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप मैं मना कर दूंगा, नहीं तो मैं ऐसे एज अ रेफरेंस टेक यूज कर लूंगा। नेक्स्ट थिंग आई नो कट टू अमरबीर बाजवा जो कविश के एसोसिएट है, ही कॉल्स मी कि सनी सर वांट्स टू मीट यू इन हिज फार्म, छतरपुर में उनका फार्म है। मैं गया बिठाया वहां पे, जो दो राइटर्स थे वो मेरे पुराने दोस्त हैं। सो उन्होंने सनी सर को बता दिया था हम इसको जानते हैं, तो बहुत बड़ी एक्टर है, तो छुपा रुस्तम करता था, ये करता था, वो करता था। सनी सर ने मेरा ऑडिशन वाला देखा, होटेलियर वाला, एंड ही सेड नो यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर प्लेइंग द अदर पार्ट, द मेन नेगेटिव लीड। सो वो किस्मत थी कि मैं पहुंचा, कविश से मिला, मैंने ऑडिशन दिया और ये सब हुआ, तो इट जस्ट हैपेंड। तो ये किस्मत तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं आपको बताना चाहता कि ऑडिशन देते रहो, कभी पता ही नहीं चलता।

0: आपके और आपके सपनों के बीच अक्सर खड़ा होता है ये
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और पता नहीं आपने गेस किया या नहीं, लेट मी टेल यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द जमाना, द सोसाइटी। एंड आज हम स्पेसिफिकली सपनों की इतनी सारी बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एक्टर विजयंत कोहली, जिन्होंने सीरीज सपने वर्सेज एवरीवन में विलन का रोल प्ले किया है, दैट इज कुकरेजा, एके मामा का। तो इस सपनों की कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सपने वर्सेज जमाना, ये फाइट तो आपकी चली होगी आई एम श्योर।
3: सबकी है ये फाइट, ये फाइट सबकी है। सपने वर्सेज जमाना इज मोर ऑफ सपने वर्सेज हालात, सपने वर्सेज रियलिटी चेक। क्या कर लोगे यार, अगर नहीं जा पाओगे टाइम से, नहीं पहुंच पाओगे कहीं जगहों पे अपनी मजबूरियों की वजह से, अपने घर के प्रेशर की वजह से, अपनी मॉनिटरली जो सेटबैक्स होते हैं उनकी वजह से आप नहीं जा पाओगे, तो वो तो जिंदगी भर की फाइट है, वो कभी खत्म भी नहीं होगी। श्रुति, सपने वर्सेज जमाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। आपके सपने, आपका जमाना, आप भी एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते हो बट आपके भी सपने हैं, लेकिन जमाना आपके अगेंस्ट भी खड़ा हुआ है, तो आपको लगता होगा कहीं ना कहीं यार ये क्या हो रहा है। तो ये तो चीज रहेगी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ये तो यार ये तो रहेगा।
0: You have to live with it.
3: You have to live with it.
0: Nevertheless, ये फाइट तो जिंदगी भर हमारे साथ चलने ही वाली है, बट yes, we definitely can live with some good content, and तभी तो सपने वर्सेज एवरीवन को इतना अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कसम बता रही हूँ एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एवरीथिंग इज जस्ट वाव अबाउट इट। नहीं देखा देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट, क्योंकि आप बहुत कुछ मेजर अच्छा मिस कर रहे हैं। मिर्ची पे दिस इज इट, मैं हूं श्रुति सेइंग बाय बाय टू विजयंत कोहली। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स।
3: थैंक यू सो मच।

दोस्तों, मंडे का मतलब रीसेट का बटन दब चुका है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वीकेंड के बाद जब अलार्म्स वापस सीरियस हो जाते हैं ना, तब लगता है कि गेम फिर से शुरू हो चुका है। जी हाँ, फ्रेश पेज यानी फ्रेश चांस। गलतियाँ कल ही रह जाती है, आज सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती है। क्योंकि मंडे थोड़ा डिमांडिंग ज़रूर होता है, पर साथ ही एक साइलेंट प्रॉमिस भी करता है कि इस वीक ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी इस वीक का रीसेट हो चुका है तो मुझे ज़रूर बताना ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi कि इस मंडे को रीसेट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए कौन सा खास गाना बजाओ। फिलहाल के लिए आपके मंडे को रीस्टार्ट करने के लिए ये धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप, मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मंडे इवनिंग। वैसे मदर्स डे का वीकेंड पास ऑन हो चुका है और यार इस वीकेंड को ना एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। मतलब सोचिए ना, कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह मॉम्स ही मॉम्स दिखाई देते हैं, ओल्ड फोटोज, इमोशनल कैप्शन, चाइल्डहुड स्टोरीज, क्योंकि यार हर कोई ना अपनी मॉम को बड़े प्यारे तरीके से दिल खोल के विश करना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच ना मुझे बचपन की वो वाली फीलिंग याद आती है। याद है जब हमें रिलेटिव्स कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं एज शगुन या प्यार, तो हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से ना थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। बस मॉम्स को भी ना शायद वैसी ही फीलिंग आती होगी। ऊपर से तो वो बोलती है कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, पर अंदर ही अंदर ना वो एक्स्ट्रा हग, वो पोस्ट, वो फ्लावर्स उनके चेहरे पे भी ना एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले ही आती है। क्योंकि कभी कभी अप्रिसिएशन लाउड नहीं होता, बस आंखों में हल्का सा स्पार्कल लेके आ जाती है। तो अगर आपने भी अपनी मॉम को थोड़ा एक्स्ट्रा फील करवाया है, ट्रस्ट मी, उन्हें ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपकी मॉम का क्लासिक रिएक्शन क्या था जब आपने उन्हें मदर्स डे विश किया। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए मम्मी स्पेशल ये अगला गाना राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirchi, burga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
2: सर, आप तो सर पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा हूँ सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं? हाँ जी.
2: अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए। क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजंस जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जहाँ सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, सस्पेंस लवर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट, दृश्यम 3 का ट्रेलर आ चुका है। और वैसे यार, इस मूवी में मोहनलाल रिटर्न्स एज जॉर्ज कुट्टी, और ये ट्रेलर ना बहुत ही ज़्यादा डार्क चैप्टर रिवील करता है एज ओल्ड सीक्रेट्स कम बैक टू हॉन्ट हिम। वैसे दृश्यम फ्रेंचाइज के बारे में यही एक बहुत बड़ा चार्म है कि अलाउड नहीं होती, लेकिन दिमाग को फुल टाइम काम पे लगा देती है, क्योंकि हर सीन में डाउट, हर साइलेंस में एक क्लू होता है। तो आप भी बताना दोस्तों, दृश्यम देखते वक्त क्या आप भी डिटेक्टिव बन जाते हो या बस एंड ट्विस्ट का वेट करते हो? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची फ्रेश माल।
1: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा। और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

बॉलीवुड कॉमेडी का एक फेवरेट फॉर्मूला वापस आ रहा है, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, ऑकवर्ड सिचुएशन और फुल ऑन फैमिली स्टाइल केओस। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर आ चुका है और इसमें फीचर हो रहे हैं आयुष्मान खुराना, वमिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, डायरेक्टेड बाय मुद्दर अजीज। वैसे ट्रेलर का वाइब तो काफी क्लियर है, रोमांस भी है, कंफ्यूजन भी है और वो टिपिकल अब कौन किसके साथ है वाली कॉमेडी। वैसे मेरा टेक तो ये है इस पे कि यार अगर राइटिंग शार्प हुई ना तो जी हाँ, ये फिल्म वीकेंड लाफ्टर डोज जरूर बन सकती है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है बॉलीवुड में कि यार कब तक वही घिसा पिटा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कभी कोई नई कॉमेडी नहीं आ सकती। और उससे भी ज्यादा मुझे कंफ्यूजन इस बात का है, इनफैक्ट क्यूरियोसिटी इस बात की है कि वाई आयुष्मान खुराना, वाई आर यू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स। वैसे थोड़ा सा मुझे इस वजह से यू नो क्यूरियोसिटी तो है कि शायद आयुष्मान ने स्क्रिप्ट देखी होगी, पसंद की होगी, क्योंकि आयुष्मान की स्क्रिप्ट चूजिंग पे थोड़ा सा भरोसा तो है। तो हाँ, उस वजह से थोड़ा लगता है कि शायद कोई हटके स्टोरी हो सकती है, लेकिन ट्रेलर देख के लग तो नहीं रहा है कि ज़्यादा हटके होने वाली। वैसे आप ही बताओ दोस्तों, आपको रिलेशनशिप कॉमेडी पसंद है या आप भी बोलते हो कि यार रियल लाइफ में इतना कन्फ्यूजन है, अब वही चीज़ें स्क्रीन पर नहीं देखनी। ज़रूर बताना, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आयुष्मान का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी, इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? यार नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे आप, क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कंफर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। चल मैं ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माय माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, एडल्टहुड का भी एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ वापस आ जाता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहाँ लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, दैट इज देसी गर्ल, संग बाय शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान एंड विशाल ददलानी। ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे

वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, poscabana, sacabana. Rambana. Burka, burka. La vieja la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है? ये
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसे पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कंपोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कंपोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैगलाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी यार, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार, जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी, जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने। यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में, लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं, तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं। एंड दैट इज खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती। लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं। आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं। लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो, विच इज़ दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहा, इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
2: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes pow.
3: Swag, style aur non-stop dancing ke liye taiyar ho jao.
2: Add it, turn it up, and don't sit now. Just go wow.
3: Wow! Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपर हिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

दोस्तों, एडल्टहुड का भी ना एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योर सेल्फ वापस आ जाता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहाँ लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: नहीं यार, आई मीन मैं इसलिए हम दोनों की फोटो क्लिक करके भेज रही हूँ बिकॉज मैंने ना सुनीत को कहा था कि सृष्टि और मैं जा रहे हैं, बट सुनीत कह रहा था कि जस्ट ऐसे ही मेरे को फॉर श्योर पता होना चाहिए ना कि तू सच बोल रही है या मैं ऐसे कंफ्यूज ना हो जाऊँ. व्हाट डज दैट मीन? दैट इज टॉक्सिक. बट गर्लफ्रेंड्स विल डिफेंड दैट सेइंग टॉक्सिक थोड़ी है, ही इज जस्ट वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी. या फिर जब आप एक ग्रुप एक्सकर्जन पर जा रहे हो जिसपे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर योर बचपन के दोस्त, बट यू स्टिल हैव टू आस्क योर बॉयफ्रेंड, क्योंकि हो सकता है दैट उसे पसंद ना आए दैट आप छुट्टी पर जा रहे हो विद सो मेनी मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल. दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक. बट वॉट आई लव इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि ये टॉक्सिक थोड़ी है, ही इज जस्ट पजेसिव. वो बस पता करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, सेफ हूँ. यू नो हाउ द वर्ल्ड इज राइट नाउ. सिस, गेट अ लाइफ एंड अ थेरेपिस्ट, बिकॉज वॉट यू लव इज सेल्फ सैबोटेज. अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, एंड आई कीप सेइंग, जिनके रेड फ्लैग्स पकड़ पकड़ के आप अपना लाल शादी का लहंगा बनाने वाले हो, इसे करने से पहले एक बार फ़ोन पे बात कर ले. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जस्ट